नगर, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर, उभारते हैं ऐश पर तो क्या करे कोई बशर।

0: आजचा हमराज कार्यक्रम पुढच्या भागात भेटण्यासाठी निरोप घेत आहोत.
1: जगमोहन इस तरह गलत महमूद वगैरह मुकेश पर मैंने काम किया था. मेरी इच्छा थी कि कभी साइकिल के गाने कभी अच्छे ढंग से पूरे लिखे हुए किसी किताब में मिले तो खुशी होती. लेकिन ऐसी कोई किताब तब तक निकली नहीं थी जिसमें साइकिल साहब के सभी गाने फिल्मी गैर फिल्मी और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ में हो. तो मैंने सोचा करीब उनके 200 गाने होंगे. तो साइकिल साहब की जन्म शताब्दी 2004 में थी तो 2003 में करीब ये मेरे दिमाग में आया कि ये काम हो तो अच्छा हो. तो मैंने कानपुर मंदिर सिंह को लिखा था कि ये काम मेरे पास कई गाने हैं थोड़े बहुत कम ढूंढने पड़ेंगे तो मैं ढूंढ के दूंगा. आप ये काम करिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा कि साइकिल साहब को 100 साल होने पर ट्रिब्यूट हो. तो उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर ये काम करते हैं. तो हमने 2003 में ये काम शुरू किया था. तो साइकिल साहब के करीब 200 गाने उसमें पूरे दिए गए हैं जिसमें सभी हिंदी फिल्मी गाने हैं गैर फिल्मी गाने हैं भजन गजल वगैरह है और क्षेत्रीय भाषाओं में 4 भाषाओं में साइकिल साहब ने जो गाने गाए थे तो वो पंजाबी थे पर्शियन थे तमिल थे और बांग्ला थे. वो सभी गाने पूरे स्क्रिप्ट के साथ 2 भाषा में दिए गए हैं और उसमें हिंदी और अंग्रेजी में पूरे गाने पूरी स्क्रिप्ट दी गई है. और जो कानपुर से प्रकाशित हुआ था उनका नाम था जब दिल्ली टूट गया जो साइकिल साहब का गीत था और लोगों को काफ़ी पसंद आया क्योंकि आज तक सुन सुनकर सभी गाने एक जगह मिले साइकिल साहब के ऐसा कभी संभव नहीं हुआ था. तो ये साइकिल साहब की जन्म शताब्दी पर 2004 में अहमदाबाद में ग्रामोफोन क्लब में इसका पहली बार विमोचन हुआ था. हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा दोनों में दिए गए. कुछ लोग विदेश में हैं जो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं तो उनको भी गाने सुनने के लिए आसानी रहती है.

इतना घर, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर, उभारते हैं ऐश पर तो क्या करे कोई बशर।

0: पुढच्या भागात भेटण्यासाठी निरोप घेत आहोत.
1: जगमोहन इस तरह अलग महमूद वगैरह मुकेश पर मैंने काम किया था. मेरी इच्छा थी कि कभी साइगल के गाने कभी अच्छे ढंग से पूरे लिखे हुए किसी किताब में मिले तो खुशी होती. लेकिन ऐसी कोई किताब तब तक निकली नहीं थी जिसमें साइगल साहब के सभी गाने फिल्मी गैर फिल्मी और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ में हो. तो मैंने सोचा करीब उनके 200 गाने होंगे. तो साइगल साहब की जन्म शताब्दी 2004 में थी. 2003 में करीब ये मेरे दिमाग में आया कि ये काम हो तो अच्छा हो. तो मैंने कानपुर को लिखा था कि ये काम मेरे पास कई गाने हैं थोड़े बहुत कम ढूंढने पड़ेंगे तो मैं ढूंढ के दूंगा. आप ये काम करिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा कि साइकिल साहब को 100 साल होने पर ट्रिब्यूट हो. तो उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर ये काम करते हैं. तो हमने 2003 में ये काम शुरू किया था. साइकिल साहब के करीब 200 गाने उसमें पूरे दिए गए हैं जिसमें सभी हिंदी फिल्मी गाने हैं गैर फिल्मी गाने हैं भजन गजल वगैरह है और क्षेत्रीय भाषाओं में 4 भाषाओं में साइकिल साहब ने जो गाने गाए थे तो वो पंजाबी थे पर्शियन थे तमिल थे और बांग्ला थे. वो सभी गाने पूरे स्क्रिप्ट के साथ 2 भाषा में दिए गए हैं और उसमें हिंदी और अंग्रेजी में पूरे गाने पूरी स्क्रिप्ट दी गई है. और जो कानपुर से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था जब दिल्ली टूट गया जो साइकिल साहब का गीत कोश था और लोगों को काफ़ी पसंद आया क्योंकि आज तक सुन सुन कर सभी गाने एक जगह मिले साइकिल साहब के ऐसा कभी संभव नहीं हुआ था. तो ये साइकिल साहब की जन्म शताब्दी से 2004 में अहमदाबाद में ग्रामोफोन क्लब में इसका पहली बार विमोचन हुआ था. हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा दोनों में दिए गए. कुछ लोग विदेश में हैं जो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं तो उनको भी गाने सुनने के लिए आसानी रहती है.